मन नू झटका लग के तुहाडा मन मोड़ा खा के गुरबाणी ते गुर बचना वल लगे ओ सुथरे दी गल ते ओ हरकत जिहड़ी है माड़ी ना समझो ओ तुहाडी मित्रताई तुहाडे भले विच है। और कदे सोचिया होवे मेरा मन भी गुरबाणी वल जागे है कि नहीं, सिरजनहार दीआं गल्लां वल जागे है कि नहीं, इस भरपूर रस रहण वाले पासे मेरा मन तुरे है कि नहीं। साहिब पंचम पातशाह नूं पुछिया सिखां नूं, कहण लगे महाराज देखो ना पंछी जागदे ने ते ओ बोलदे ने, पता लग जांदा है अपने आप ही पंछी जाग पैंदे, रोशनी होती है पता लग जाता कि सूरज चढ़ पे। हर एक शायद का जागना अपने आप च एक ऐलान लैके आता है, हर शायद जागण में एक ऐलान है, पता लगता है कि फलानी चीज जागी। ते महाराज मनुख कदों जागदा ध्यान देना, असी वैसे बिस्तरे चो जागने और जागना कुछ होर है, साडे अंदर धर्म का जागना कुछ होर है। कहन लगे महाराज बंदे का जागना की है, मनुख का जागना की है। ते साहिबा ने वचन किया साहब कह लगे जिस दिन गुरु की बाणी मनुख नु मिठी लगन लग पवे ना समझ लेना बंदा जाग पे। जो मृत लाग गए गुरु की बाणी, मन जागण की यह है निशानी। समझो मन जाग पे है जिस दिन गुरु नानक की बाणी मिठी लगन लग पे। भाई साहब भाई संतोष सिंह के बचना च महाराज कहन लगे सिखो जिस दिन तुहाडे मन नु बाणी मिठी लगन लग पवे समझ लेना उस दिन मन जाग पे, जिस दिन रस आना शुरू हो जाए और रस आवेगा यह गल वखरी है कि इस पासे का रस जरा हौली हौली शुरू होता है। आपां तुखारी दे बारह माह च महाराज धन गुरु नानक पातशाह का बचन पढ़ने, असुन आओ पेरा साधन चूरम होई, प्यार दी बद्दी होई विरहण जेड़ी है वो चुरदी है कि केड़े वेले आके मिलाप दियां घड़ियां प्राप्त हो, पर वो झूरदी जेड़ी उतावली जेड़ी दूसरे पासे गुरमुख बिरती वाली वो कहंदी है ता मिलिए प्रभु मेला दूजे भाई सरकड़े खड़े हो जाणगे, तरह तरह के बूटे बेकार के पौधे खड़े हो जाणगे। और इसे भाव की कसाखी भी दसते ने, कहंदे ने किसे महात्मा दे डेरे दे आले दुआले थां पई सी, चेले नूं कहण लगा देख बरसातां हो गई हटियां ने, इत्थे कुछ ऐसे बूटे ला दे इस थां नूं साफ करके, जंगल विचों पनीरी अपने आप उठी हुई है, कुछ अंबां दे कुछ रसदार फलां दे बूटे लिया के ला दे ताकि आउण जाण वाले साधां दी सेवा वास्ते तैनूं दूरों फल लैण ना जाणा पए, इत्थों ही फल लै के उन्हां दे पेश कर दिया करांगे ते अपना भी कम चलदा रहे। सत वचन तां कह दित्ता पर मन्निया कोई ना, बहुत लोग ऐसे हुंदे ने सत वचन तां कह दिंदे ने अमल नहीं करदे, सत वचन कह दिता कीता कुछ ना, नतीजा होया बरसातां तो बाद उस धरती विचों बेकार दे बूटे उठने शुरू हो गए, घा बाथू सरकड़ा कई कुछ उठिया, वो सारी धरती जड़ी सी ना बेकार दे बूटिया नाल भर गई। सर्दी आई लंघ गई वो बूटे होर मजबूत हुंदे चले गए, गर्मी आई वो सुक गए उन्हां दी जड़ां विचों लियां बरसातां च होर कुछ नवा नवा फुट पिया। महात्मा कहण लगे काका तैनू कहा सी ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੱਟਣ ਪਟਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀ

छेती घर जावे। इना अमोलक हीरियां लालां तो महंगे श्वासां दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा ता तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तैनू घल्या है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पा के तू जाके बह जावे जिवें जुआरिया हार के बह जांदे चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहंदे ने इन्हां अमोलक श्वासां दे नाल ओ धन कठा कर जेड़ा इथे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावे दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल श्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावे ते तेरे हाथ दोवें खाली हो, अपनी प्रतीत भी गवा के जावे। इसलिए हजूर कहंदे ने आया सें श्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आउणा सफल है।

नाम रूपी अमृत पीत है ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा किसे मारे पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा उचारण करो श्री वाहेगुरु इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओह ही सुचे हन ओह ही चंगे हन जिन्हां ने जपया श्री

एक लोभी पुरुष पदार्थां विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां नूं पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन

मन करके परमेश्वर दी भगती करते हैं। ये लोगों नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां माला फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला बैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे ने कि ये भगती भाई परवान नहीं, उसके इस पखंड नूं देख के ता फरीद जी ने यह शलोक उचारण किया, फरीदा जान लब ता नेहो क्या, जिथे लोभ है उथे नेहो क्या, उथे परमेश्वर का प्यार की होना है, नेह की होना है, उथे ता केवल माया का ही प्यार है। लब ता कूड़ा नेहो किचड़ घत लंघाइए, छप्पर टुटे मेहो। हे भाई, जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लभ करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई, जे प्यार करना है ता सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल। ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है। ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे तो फिर तेरा प्यार कादा होया। तां फरीद जी कहंदे हन गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तो भिजे कंबली रहा तो टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी तां उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे

एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया ते मथा टेकन लग्या, ओ पूरी तरह ना चुकिया भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणभोल पुरुष नू ए नहीं पता भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु।

फरीद जी बैठे हन रब दे प्यार विच जुड़े होए ता आकाश बाणी होई हे फकीर एवें जमीन पर लेट के क्यों दुख पा रहे हैं मंजा लेप तुलाई कुछ कपड़े नाल ले ले क्योंकि सर्दी दे दिन हन ते नाले सिमरन कर नाले सुख पो ता बाबा फरीद जी रब दे रंग विच रते होए जिन्हां दे हिरदे विच शिक सी साईं दे मिलन दी ए गल सुन के फरीद जी कहंदे ने हे वाहिगुरु मेरे पास खटोला भी है लेप भी है कपड़े भी हन आख्या केड़े कपड़े हन केड़ा खटोला है ता बाबा

खड़ोता। एक हनेरा सी, दूजा उसनू घट दिसदा सी लोहार नू। चंगा मुड वेखण वास्ते उस लोहार ने कुहाड़े दा पिछला पासा वगा मारिया बाबा फरीद जी नू। उस कुहाड़े दे वजन नाल फरीद ने नेत्र खुले ते लोहार नू खड़ोतियां वेख के आप दे नेत्रां तो जल आ गया ते ए शलोक उचारण कीता। कंध कुहाड़ा सिर घड़ा वन के सर लोहार, फरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंग्यार। ए लोहार कंध कुहाड़ा, कंधे ते रख के कुहाड़ा, सिर पर पानी दा घड़ा चुक के ते फिर बन विच फिर रहा है लकड़ लभदा। फरीद जी कहंदियां तू कोले लोड़दा है, तू लभ रहा है कोई चंगा जिहा मुड लभ जाए, उसनू कट के साड़ के कोले करके घर लै जावां।

कि काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन करदे हन, मैं तां अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है। इस दे विच कोई औगण होवे ता मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं जंगलां विच, असी रब नू लभ रहे हां। कंध कुहाड़ा सिर घड़ा

उड़ो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण किया हुआ है। भगत

जो मनुखी जिंदगी दे विच कीते होए एक खास अनुभव दा आत्मक अवस्था दे किसे खास एक ऐसे एक्सपीरियंस दा जो एक्सप्रेशन जो साडे सामने पेश कीता है इस शब्द दे विच वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम है। अते विरलियां नूं अजिहा थ्रिलिंग, अजिहा जॉयफुल, अजिहा अनुभव जो है वो हासिल हुंदा है इस शब्द दे विच। कबीर जी एक दृष्टांत साडे सामने रखते हैं, पहला मैं वो दृष्टांत तुहाडे सामने रखा ताकि उस गल नूं मैं जो एलैबोरेट करना चाहना हाँ वो मैं कर सकां। शब्द आप फिर प्यार नाल सुनो, कहिंदे हन पंथ निहारे कामनी, कामनी कहिंदे हन एक स्त्री नूं, पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा उरना पिजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा। एक मेटाफर है, एक दृष्टांत है, एक उन्होंने मिसाल दिती है साडे सामने। जिस तरह कहिंदे हन एक पत्नी जिसका पति प्रदेश दे विच चले गया होवे बहुत लंबे समय दे वास्ते, अते उसकी जदों वो जुदाईगी महसूस करती है, उस जुदाईगी दे विच की करती है, पंथ निहारे उसका रस्ता देखती है, उसकी राह तकदी है, उसका इंतजार करती है। पंथ निहारे, निहारे का मतलब देखती है, पंथ निहारे कामनी वो औरत लोचन भरी, कई दफा उस विछोड़े दी जो दर्द है उस करके उस दे लोचन भरी, उस दी अखां जो हन लोचन हन वो भी पानी दे नाल भर जांदियां, आंसुआं दे नाल भर जांदियां। ले उसासा अते अपने अंदर ही अंदर उस जो खला है जिंदगी जो कमी है उस दे कारण ले उसासा वो होके भी लेंदी है। अगे चलदे हन, उर ना पिजे उस दे हिरदे नूं उस दे दिल नूं टिकाओ नहीं आता। पता नहीं केड़े युग दियां ये गल्लां भगत कबीर जी ने साडे सामने पेश कीतियां हन। एक दृष्टांत है, अज दी जिंदगी च पत्नियां ऐसा महसूस करदियां हन जां नहीं ये मैनूं नहीं पता, लेकिन भगत कबीर जी ने ये दृष्टांत ये प्रमाण साडे सामने किसे युग दा बख्शिया है। कहिंदे हन उर ना भिजे उस दा हिरदा जो है वो खलोंदा नहीं है, और कहिंदे हन हिरदे नूं दिल नूं, दिल नूं उस दे नूं टिकाओ नहीं आंदा, तसल्ली नहीं आंदी, बेचैनी है, एक उथल पुथल है। और ना पिजे पग ना खिसे अते उस दे पैर अगां चलदे नहीं हन, भाव कोई सत्या नहीं अंदर कुछ करन दी। और ना पिजे काश अज दी दुनिया च अजिहा ही प्रेम होवे, लेकिन भगत जी ने किसे खास ही वक्त दे विच जदों अजिहे रिलेशन्स हुंदे सन उदों दी यह मिसाल दिती है। और ना पिजे पग ना खिसे पैर अगां चलदे नहीं हन, अते की है हर दर्शन की आसा, इत्थे जाके उन्होंने गल कही है हर दर्शन की आसा। जेड़ा भगत हुंदा है, जेड़ा दास हुंदा है, जेड़ा गुरु का सेवक हुंदा है, उस दी अंदरली जो अवस्था ए हुंदी है। जिस तरह उस कामनी दा जो पति प्रदेश दे विच गया उस दे राह तकदी है, अखियां दे विच हंझू आंदे हन, अंदर होके लेंदी है, दिल किते खलोंदा नहीं है, कदम अगां चलदे नहीं हन, जिस तरह दी कहिंदे उस औरत दी जो मानसिक अवस्था हुंदी है जो गुरु दा दास है, जो गुरु दा भगत है, जो भक्ति अते बंदगी दे मार्ग उत्ते चलदा है, कहिंदे हन उस दे अंदर अजिहा बिरह जो है वो पैदा हो जांदा है, उस दे अंदरली जो दशा अजिही वैरागमयी हो जांदी है, उस दा अंदर जो है अजिही एक लौंगिंग दे नाल भर जांदा है। और न पिजे पग न खिसे हर दर्शन की आसा। तो मैं पहला ही अर्ज कीती सी कि अज दे इस कीर्तन दे विच मैं आप दे सामने एक खास किस्म दी मनुखी जीवन दे विच जो अनुभव कीती हुई अवस्था दा जिक्र करना है। असी ये देखना है कि साडी जिंदगी भी की अजिहे अनुभव दे नाल अमीर है जां नहीं। Do we feel these kinds of experiences in life or not?
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਨੁਭਵ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਦੀ ਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਡਹੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ।

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना चुकी क्या है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हें शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था उच्चा करने की कोशिश करिए। इन्हें शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप नूं देख सकी। मैं आप जी के सामने साडे सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड ओ रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नूं होण दा दावा दिन्ने हाँ उन्हां दे हिरदे क्यों जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखन लगा हाँ। आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे अगर वह हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस अंदर की हुंदा है मोहन नींद ना आवे हावे अते उस अंदर हौके हुंदे हैं।

लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन्हों चीजा के उलझे रेंदे हो, फसे रेंदे हो, खोए रेंदे हो, तुसी इन्हों दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंगे। भाव के तुसी कदे अकदे ही नहीं हो, कदे रचदे ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हों चीजा के विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं विखियन स्यों काहे रचियो, निमख ना होए उदास। कहते निमख भरते वास्ते भी, पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छड़ना नहीं चाह रहे। कितनी ज्यादा इन्होंने जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास, कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध बिख भूख प्यासा आ साडे पले। काम क्रोध बिख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा, नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, पाप जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया दे झमेलियां तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का पाप जदों इन्हां चीज़ां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था अजिही नहीं है, कबीर साहब दी है। कबीर साहब कहिंदे हन

चित्त आनंद पूर्ण परि परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हसी मुकदस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तो अलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दिते सानू। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दा सानू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शास्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शास्त्रां नूं भगवती नूं खग नूं नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उचारण कर दे विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगंग नम खग अदंगंग अपेंग अपंगंग गदांग ग्रिष्टम नहो समो सहथियंग जिने तुलियंग वीर दियो ना दियो। सतगुरु पातशाह जी दा आओ शास्त्रनामा बड़े प्यार नाल श्रवण करो। ये राग जो आप जी श्रवण कर लगे हो कोशिश करांगे राग ये जिस तरह के आप जी सारे जानते हो पंथ प्रसिद्ध जथा सत्कारयोग अति सत्कारयोग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी गुरबाग सिंह जी जो पंथ के रतन हैं पंथ के हीरे ने तो सतसंग जी वह भी बैठे ने तो अमरीक सिंह जी जख्मी साहब जी कीर्तन करके गए ने। तो आओ ये राग जो आप जी के सन्मुख रखन लगे हैं ये राग जिस तरह के औडव जाति छाडव जाति संपूर्ण जाति तीन जातियां दे राग मन्ने जाते हैं पर चतस्वरी जाति चार सुर का राग है। इसका नाम भवानी राग है मां ते सा इसका वाती है बिलावल थाड़ का यह राग है। तो आओ बड़े प्यार गा पा नी ये वर्जित करके ये

اب محمل ہے جی آمن ہار۔ پرم پتا پرماتما کی اپار کرپا سے اگر ہم یہ جان لیں کہ پرماتما کی یاد کیسے نرنتر بن سکتی ہے، ہم پرمیشر کو کبھی بھی نہ بھولیں، تو یہ بات سچائی ہے کہ ہم اپنے جیون میں ہی اپنے مرنے کو سوار لیں گے۔ مرنا اسی کا ہی سوارا جاتا ہے جو اپنے جیون میں اپنے آپ ہی اپنا مرنا سوار لے۔ کیا معلوم ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مرنا کوئی سوارے گا یا نہیں۔ ہمیں تو ایسا چاہیے، ہم آپ خود ہی پرماتما کی یاد میں کھو کر ہم اپنے جیتے جی اپنے مرنے کو آپ سوار لیں۔ ایسا ہمیں گیان جو پراپت ہوا، ایسے لگتا ہے ہم شریر لے کر اور اس کی وکاس کے اوپر تو جی رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے شریر کی اور سے تو جی رہے ہیں لیکن آتما کی اور سے مر چکے ہیں۔ کیسا جیون ہوگا جس کے جیتے جی آتما تو مر جائے لیکن شریر کا وکاس نرنتر جاری رہے؟ اور پوچھنے والے ہمیں پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی آتما مر جائے اور اس کا شریر نرنتر وکاس میں ہو، اس کا پرمان ملتا ہے جب ہم ایک بارک کو چھوٹی اوستھا میں دیکھتے ہیں، وہ گر پڑتا ہے، اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس چوٹ لگنے سے اس کی بدھی کام نہیں کرتی، اس کی بدھی کا کام نہ کرنے سے وہ بھلے اور برے کی پہچان نہیں کر سکتا، وہ ہنسنے اور رونے کی پہچان نہیں کر سکتا، اور کھانے پینے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس کے نزدیک اس کے ماں بھی ہو اور اس کا پتا بھی ہو، اس کی پہچان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بات سچ ہے، اس کے شریر کا وکاس تو نرنتر جاری رہتا ہے۔ کچھ مہینے کا تھا، کچھ سالوں کا ہو گیا، کچھ سالوں کا تھا، کئی سالوں کا ہو گیا، اب تو جوانی بھی چلی گئی، بوڑھا ہو گیا، لیکن جو اس کے گرنے سے اس کی بدھ کام نہیں کرتی، وہ ابھی بھی اتنا
बूढ़ा होकर भी वो भले और बुरे की पहचान नहीं करता, लेकिन किसी भी आयु में वैद्य मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उसकी औषधि से जे अगर उसकी बुद्धि काम करने लग जाए किसी भी आयु में, वैसे लगेगा शरीर के विकास के बूढ़ा होकर भी अब तो पहचानने लगा है भला क्या है बुरा क्या है, अच्छा क्या है माड़ा क्या है, और अपने संबंधियों को मित्रों को पहचान कराने से पहचानता है। ऐसे ही हमें लगता है कि हम आत्मा की ओर से तो मरे हुए हैं, लेकिन शरीर का विकास निरंतर जारी है। हम खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, सो भी जाते हैं, खाना पीना हंसना सोना, लेकिन हमें मौत भूल गई है, बिसर गया है मरना। जब मरना बिसर गया तो खसम भी बिसर गया। खसम बिसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। जब भले और बुरे की पहचान नहीं, ऐसे लगता है आत्मा की ओर से मरने के कारण हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। इंसान में जो इंसानियत है उसको पहचानते नहीं। बख्शिश हो जाए, ऐसा सतगुरु मिल जाए, पारब्रह्म की कृपा से वो परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के शब्द की कृपा से हमारी मरी हुई आत्मा को जीवित कर दे, हमारी आत्मा पुनर्जीवित हो जाए, तब हम हर जी माता हर जी पिता को पहचान लेंगे। आखो भाई, हमारी आत्मा पुनर्जीवित हो जाए चाहे किसी भी आयु में, हम सत और असत को पहचान लेंगे। हम अपने आप से देख लेंगे इंसानियत क्या है, मूर्खता क्या है, परमात्मा ने हमें क्यों भेजा, हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। आज के पितृ शब्द में भक्त कबीर जी फरमाते हैं, देखना मुझे तो सतगुरु मिल गए, मुझे तो आत्मक जीवन देने वाला मिल गया, अब मोहे मिलो है जीवामन हारा, मेरी आत्मा मर चुकी थी, देखना प्रभु ने अपार कृपा की, मुझे सतगुरु मिला दी, सतगुरु ने अपार कृपा की, मुझे नाम की औखध दे दी, राम नाम औखध दिया एका लेव लाई, अब तो बिरति जुड़ गई। राम नाम औखध दिया, नाम की औखध मिल गई, दवाई दे दी, ऐसा राम नाम की औखधि ने काम किया कि हमारी आत्मा जीवित हो गई, पुनर्जीवित हो गई, अब पहचान हो गई। जब पहचान हुई तो हम समझे मैं ना मरबो, मैं ना मरो, मरबो संसारा, अब तो हम नहीं मरेंगे, अब तो
जन्म मरण का गेड़ नहीं पड़ेगा। भक्त नामदेव जी भी बोले, पाछै बोहर न आवन पावो। ये संसार के लोगों, मैं आपको बताता हूं, अब मैं जन्म मरण के गेड़ में न आऊंगा, क्योंकि मुझे एक औषधि मिल गई। अमृतवाणी काटते उचरों आत्म को समझाऊं, मुझे अमृत वाणी मिल गई। उस अमृत वाणी की शक्ति से मैं दावा कर सकता हूं, अब मैं जन्म मरण के गेड़ में नहीं आऊंगा। अब आवागमन का गेड़ मिटा दिया है हमने। आज भक्त कबीर जी भी बोलते हैं, मैं ना मरूं, अब मैं आत्मक मौत नहीं मरूंगा। मरेगा संसार, क्यों मरेगा? क्योंकि ऐसा संसार मर मर जाते जिन राम ना जाने। ये मर रहा है, देखो शरीर करके मर रहा है और आत्मक की ओर से भी मर रहा है। ये आत्मक तौर पर मर रहा है, मरने का कारण क्या है? शरीर तो मरेगा ही मरेगा, जिसने जन्म लिया उसने मरना है। पर देखो ये तो आत्मक तौर पर मर रहा है। मरने का कारण क्या है? मर मर जाते जिन राम ना जाने। सारे जीवन में रमे हो राम को, परमात्मा को जाना ही नहीं, उसको याद नहीं किया। जिसने परमात्मा को बिछार दिया उसने तो बिछड़ना ही बिछड़ना है। उसका था बिछोड़ा बेमुख हुए राम ते, लगन जन्म बिजोग होगा। अब भक्त कबीर जी और सुनाते हैं, कहते देखना जब मुझे पूर्ण सदगुरु मिले, प्रभु की अपार कृपा से मुझे ये मालूम हो गया। क्या? देखना मुझे मेरी अम्मा याद करे, मुझे मेरी मां याद करे, तो मैं मां के पास जाऊंगा। जब मां के पास जाऊंगा मां मुझे प्यार करेगी, क्या मैं मां के पास रोकर जाऊंगा? अजय ये मेरे घर से बुलावा आ जाए, मेरी मां का मेरे पिता का, आप मुझे भेजेंगे? आप भेजने वाले मुझे रोकर भेजेंगे? ये कैसे होगा? मैं अपने घर जा रहा हूं अपनी मां के मिलने के लिए, अपने पिता के मिलने के लिए, आप रोकर क्यों भेज रहे हैं? मैं रोकर क्यों जाऊं? ऐसे लगता है आप अपने अपने घर से यहां आ गए बैठ के, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। ये भी अच्छा है आप बैठ के, क्या आप बैठे रहेंगे अपने अपने घर? वापस नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे? जब अपने अपने घर जाओगे क्या रोकर जाओगे? क्या अपने घर रोकर जाते हैं? यहां पर बैठे हैं, हमारे घर से कोई बुलावा आ जाता है, आपको घर बुलाया है, क्या आप नहीं जाएंगे? किसी समय भी आ सकता है, क्या आप रोकर जाएंगे? यहां बैठने वाले आपको भेजने के समय रोएंगे? नहीं। ऐसे लगता है कि हम सब, आप सब निरंकार से घर से आए हैं, परमात्मा के घर से आए हैं। हमारा घर वो है, ये नहीं संसार नहीं है अखो भाई, हमारा घर परमात्मा का घर है। वहां से आए हैं संसार में, संसार में हम बैठ गए। जिसको हम जीवन मानते हैं क्या बैठे रहेंगे? कितनी देर बैठोगे?
आखिरकार तो जाना ही है, क्या बैठे रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे? किसी समय भी बुलावा आ सकता है, क्या जाएंगे नहीं? जे अगर अपने घर जाना ही है फिर रोकर क्यों जाना है? ये भेजने वाले हमें रोकर क्यों भेजते हैं? जब हम संसार में आए इन्होंने शहनाई बजाई, बधाई दी। जब हम परमेश्वर से अपने परमपिता से विछड़ कर आए इन्होंने बधाई दी, शहनाई बजाई। जब हम अपने परमपिता के घर जा रहे हैं ये हमारे घर में ही रोते हैं। चाहिए ये ऐसा पूर्ण सदगुरु का उपदेश, पूर्ण सदगुरु की शिक्षा ग्रहण कर लें। मैं गुरु की हजूरी में ये बात दावे से कह सकता हूं, जब हम जाएंगे ये तो रोते रोते ही रहेंगे, रोने वाले तो रोते ही रहेंगे, लेकिन परमात्मा की दरगाह में, परमात्मा की हजूरी में हमारे जाने पे शहनाई बजेंगी, वहां पर बधाई होगी, वहां पर शहनाई बजेगी। ऐसे ही भगत कबीर जी बोले, आखो भाई करो, कहते अवर मुए क्या सोग करीजे, दूसरों के मरने पे आप शोक करते हैं, क्या भूल गए हमने भी मरना है? तो कीजे जो आपन जीजे, ये हमने भी मरना नहीं, हमने मरना है, आखिरकार तो हम भी मरेंगे। मरने की बात तो सच्चाई है ना, ये तो किसी को भूलनी नहीं चाहिए। जब हम मरेंगे तो बोलने वाले बोले थे क्या रो रहे हैं, रोने वाले क्या रो रहे हैं, ये तो रोने समय ये भी बोलते हैं आप क्यों मर गए, आपकी जगह हम मर जाते। आखो भाई करो, लेकिन कोई आज तक मरा है? पैर होवे गुणसार संभाले, को मुए को मरे ना मुया नाले, आज तक को मरे? बोलने वाले सब बोलते हैं आप क्यों चले गए, हम चले जाते, लेकिन कोई मरा नहीं। पितृवाणी में बोला पुत भाई पाती जाए रोवे, को मुए ना कोई मरे ना मुया नाले, पैर होवे गुणसार संभाले, रोने वाले तो रोते रहेंगे, पर जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की शिक्षा को मान लिया उनको दरगाह के जाने का रास्ता मिल गया। आखो भाई गुरु, मैं बेनती करूंगा ये बात ध्यान में रखना है, हमें जो जीवन मिला है ये एक रास्ता है, मंजिल नहीं। आखो भाई, इस बात को समझना है, हमें जो जीवन मिला है एक मंजिल पे जाने का रास्ता है, मंजिल नहीं। दम इसको हम मंजिल समझ लेंगे तो बढ़ते कदम वहां ही रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात जे अगर समझ ली कि जीवन एक रास्ता है, ये बात भी समझ आएगी। क्या? जो आप जीवन में रास्ता बना लेंगे उस रास्ते में निरंतर चलेंगे, मरने के बाद भी वही रास्ता होगा। आखो भाई, ये बात समझ ले, जो भी आपने रास्ता बना लिया जीवन में, जो उस रास्ते पे आप चलते रहे
مرنے کے بعد وہی راستہ ہوگا۔ یہ بات سچائی ہے۔ پھر ہمیں جیون کیوں ملا؟ جیون کس لیے ملا؟ پربھو کی پراپتی کے لیے۔ جے پرماتما پرم پتا کی پراپتی کے لیے جیون ملا، جے ہمارے جیون میں راستہ بھی پربھو کی پراپتی کا مل جائے، ہم اس راستے میں چلیں۔ پرماتما کی پراپتی کا ایک ہی راستہ ہے، پربھو کی صرف صلاح، پربھو کی وڈیائیاں، ایک ہی راستہ ہے۔ تو نہیں، پرماتما کی صرف صلاح ہی ہمیں وسماد کے کر لے جاتی ہے، وسماد کا کار ہمیں واہگرو کے کر لے جاتا ہے۔ جی اگر ہم جیتے ہی جیون میں ہی مرنے سے پہلے

हम शरीर को जितना मर्जी पाल लें, अच्छा बढ़िया बना लें, अच्छा सवार लें, मोटा कर लें, ताजा कर लें, आखिरकार इसकी यात्रा कहां तक है? शमशान घाट तक। आखो वाहिगुरु, इसे आगे नहीं। आखो वाहिगुरु, हमें शरीरों वाले आखिरकार शमशान घाट ले जाएंगे, मुर्दा घाट में ले जाएंगे, लेकिन अच्छा हो जे हम शमशान घाट पहुंचने से पहले पहले इस शरीर को शमशान घाट पहुंचाने से पहले पहले मन को भगवान के घाट ले जाएं। जीते जी मन को भगवान के घाट ले जाएं, बात बन जाएगी। देखना, शरीर भी अपने आप नहीं जाते मुर्दा घाट में, दूसरे शरीर शरीर के मरने के बाद इसको ले जाते हैं। जे शरीर शरीर के मरने के बाद इसको शमशान घाट ले जाते हैं, तो मन भी भगवान घाट जा सकता है जे गुरु के शब्द की अपार कृपा से, उसकी कमाई से हम मन को मार लें, और गुरु की शब्द की कमाई ही मन को भगवान घाट ले जाएगी। एक बात और, परमपिता परमात्मा ने मौत बनाई है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी रचना के लिए। रखो भाई, परमपिता प्रभु ने जन्म बनाया है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सृजना के लिए। ऐसे मालूम होता है कि परमात्मा के ग्रह में ना तो जन्म है ना मौत है। जे हम जीवन जीते ही गुरु की शब्द की अपार कृपा से मन को भगवान काट ले जाएंगे, वहां पर ना जन्म है ना मरण है। हम जीते जी ही दावा कर लेंगे, अब तो हम जन्म मरण में नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे अब मोहे मिलियो है जीवन हार। अब मोहे मिलियो है जीवन हार। सारे बोलो, अब मोहे मिलियो है जीवन हार। अब मोहे मिलियो है जीवन हार। एक बात और कहकर मैं शब्द को समझना है, उस शब्द को सुनाकर। जब सुबह होती है, आप भी उठते हैं, संसार के जीव सुबह होते खुशियां मनाते हैं, ऐसे लगता है पंछी भी पशु भी अपनी अपनी बोली से बोलते हैं, ऐसे लगता है सूरज की किरणों का प्रकाश एक खुशियों का संयोग लेकर आया है। लेकिन एक याद और है, जो एक याद में डूबी हुई है, वो बोलती है क्या हुआ, हमारे जीवन का एक दिन और कम हो गया। देखना, जो सुबह आई थी अब नहीं आ सकती, जो कल बीत गया बीत गया, जो आज दोपहर बीत गई बीत गई, हम उसको वापस नहीं ले आ सकते। हमारा बचपन गया, जवानी भी चली गई, हम उसको वापस नहीं ले आ सकते, वापस कभी नहीं आवेगी। वो जहाज एक वियोग में डूब गई, पर ये देखा, एक तो याद वियोग में है, हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया, अब क्या होगा, एक एक कर कम होता जा रहा है, दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां, आवद कटे तन छीजे। पर ये भी देखा, जिन्होंने सुबह होती

खुशियों का संयोग समझा, खुशियों को संयोग तो समझा, लेकिन उस दौड़ में शामिल हो गए जिसमें पदार्थों की दौड़ लगी हुई, विकारों की दौड़, वासनाओं की दौड़, मंदे कर्मों की दौड़, सब दौड़ रहा है। जितना जीव है सुबह होते ही अपने अपने वासनाओं के, अपने अपने विकारों के जाल में बंधा हुआ, उन साधनों से बंधा हुआ उधर दौड़ रहा है। ये ऐसे लगता है इनके तो जन्म की बाजी हार ली है। आखो वाहिगुरु, ये तो हार गए हैं, इन्होंने जन्म की बाजी हार गई, ये हार चुके हैं, ये ऐसे जुआरी हैं जो ऐसे पदार्थ, रतन पदार्थ जन्म को जुए में हार गए। इनके बारे तो ये बोला मेरे सतगुरु ने, ये तो खुशियां का संयोग मानते थे, लेकिन हुआ क्या, इनको तो जन्म जन्म का वियोग मिल गया। बेमुख हुए राम ते लगन जन्म बीजो। पर उधर क्या हुआ, जो वियोग में डूबे, हमारे जीवन का समय कम होता जा रहा है, वो तो परमपिता प्रभु की याद में डूब गए। उस याद में समो गए, वो तो परमपिता को भूलते नहीं। उस रास्ते पे अपने आप को चला लिया, जिस रास्ते पे जीवन जीते ही मैं मर जाती है, मेरी मर जाती है। ये जीवन जीते मैं मर जाए, मेरी मर जाए, समझ लेना वो कभी भी नहीं मरते। आखो वाहिगुरु, मरते वो हैं जिन्होंने मैं नहीं मारी, मेरी नहीं मारी, वो तो जीवन जीते ही मर जाते हैं। जीवन का तो लक्ष्य ये है, जीवन हम उसको ही मानते हैं जिस जीवन के बाद मौत ना हो। आखो वाहिगुरु, शरीर मर सकता है लेकिन जीवन नहीं। आखो वाहिगुरु, जे शरीर के साथ जीवन ही मर गया वो जीवन ही नहीं। वो कहता है हमें तो उस याद में डूबना है, समा कम है, क्या पता कितने दम है कि नहीं, समा तो बहुत कम है। एक लखू नाम का सेवक था, बहुत लगन से सेवा करता था, भूखों को प्रसादा चकाता, आराम करने के लिए छांव भी देता, सेवा भी करता। एक महात्मा आए, लखू की सेवा देखी और बोले, हे लखू भाई, आपके में जो लगन है, जो सेवा की तुनी है, ये कैसे प्राप्त हुई। आखो भाई, अरे लखू भाई ये कैसे प्राप्त हुई। लखू बोला, हे महात्मा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम दो चार दिनों के प्रोने हैं, क्या पता दो चार दिन में मर जाएंगे, तो सेवा ही कर ले। उसकी इस पत्नी से पूछा, अरे भाई आप भी सेवा करते हैं, आपको ये लगन कैसे प्राप्त हुई। कहते, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद हम दो चार पैर के परोने हैं, पता नहीं दो चार पैर जीना है कि नहीं। बेटी से पूछा, छोटी सी बालिका से पूछा, आपको कैसे लगन लगी। कहते, मुझे एहसास हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि अगला दम आएगा कि नहीं आएगा।
महात्मा बोले, हे रखु हम समझ गए, आप तो अभी प्रभु के मिलाप से लाख कोसों दूर हैं, आपकी इस पत्नी सौ कोसों दूर है, पर आपकी पुत्री तो बहुत नजदीक है। वो तो बात समझ गई, हम आदमी हां एक दमी। आखो भाई आप क्या हो? आदमी। जमे को पूछे आप क्या हैं? हम यही बताएंगे, हम आदमी हां एक दमी, एक दम के। देखना अगला दम आएगा आवेगा कि नहीं आवेगा, हमें मालूम नहीं। आखो भाई हम आदमी हां एक दमी, जिन्होंने ऐसा समझ लिया, इस भेद को जान लिया, उन्होंने तो वियोग से फिर परमात्मा के संयोग की यात्रा कर ली। आखो भाई उस वियोग में डूबे थे, हमारा समय कम हो गया, लेकिन उस वियोग में डूबकर ऐसी याद में डूब गए, उनको तो परमात्मा के मिलाप का संयोग मिल गया, वियोग से संयोग की यात्रा शुरू हो गई। अब हमें समझाते हैं आखो भाई, कैसे समझाते हैं? आओ शब्द पढ़ लें, भगत नामदेव जी का उच्चारण किया हुआ किवें कहते हैं।

क्योंकि साडा जीवन है कलयुग ने साडियां अखां बंद कर रखियां हन की सच है की झूठ है सानू कुछ पता नहीं लगता साडा जीवन बन चुकिया है बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म जे ए सुभा एक जन्म दा होवे ता कोई चंगा कम करके इस सुभाव नू बदलिया जा सकदा पर सानू ता कई जन्म हो गया ने ए पुलां करदियां याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म कर्म कर साडे ते रहमत कर मंदे चंगे असी तेरे हां साडे ते दया कर तू बड़े बड़े पत्थर तार दिते हन है बख्शिशां दा समुंदर है जे साडे पापां दे दो चार बेड़े इस समुंदर विच डुब भी गए तां तैनू की फर्क पवेगा इसलिए दया करो।

इतनी सिमरन सेवा भगती करदियां होया भी किसे गल दा हंकार नहीं करना, ए नहीं मन विच लियाउणा भई मैनू तां गुरु जरूर तारे ही गा ना, भावे किसे होर नू तारे ना तारे। नहीं, साडे जपा तपा नाल नहीं गल मुकनी, हे निरंकार तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है, ए अरदास करन दे ही सानू गुरु ने प्रेरणा दिती है। बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक दी अंश बंश जो हर एक शहरां विच जाके गुरु घर दा प्रचार करया करदे सन, और बड़ा लश्कर सी, बड़ी मानता सी इना दी, हाथी घोड़े रथ होर बेअंत संगता ने होना, ते जिस शहर जाना उन्हां ने दो दो चार चार मील अगों ही चौंकियां करदियां कीर्तन करदियां लैके आउणा, इतना अदब सत्कार होंदा सी। वड्डियां कमाइयां वाले सन बाबा साहब सिंह जी। जदों चंग विखियाने आए साडे शहर विच, बजुर्गां ने बचन सुनाया, चंग विखियाने आए, कितनियां संगतां आके जुड़दियां सी, ते एक कलंदर रिश लैके आ गया। बाबा जी अगे आके नमस्कार कीती, ते रिश नूं कहण लगा तुम्हीं मत्था टेक, ए वड्डे घर हन, वड्डे घर दे बच्चे हन, गुरु नानक दे बच्चे हन, इत्थों वड्डियां बख्शीशां मिलनगियां, वड्डियां दातां मिलनगियां, क्योंकि रिश नूं समझाया होया सी, ते रिश ने भी मत्था टेकिया बाबा साहब सिंह बेदी जी दे अगे, इत्थों वड्डियां दातां मिलनियां हन। ता बाबा जी कहन लगे फिर वड्डी दात देईए। हां महाराज देओ। ते बाबा साहब सिंह जी ने अपने मुंशी नूं कहा कि जा 32 रुपये नौआं ने जाके खजाने विचों ले आ, ते इस कलंदर नूं दे दे, जितने पैसे हजूर ने हुक्म कीते आके कलंदर दी चोली विच पा दिते। बड़ा खुश होया भई वड्डे वड्डे घर वेखे हन, कोई चुआनी कोई अठानी कोई रुपया, कोई वड्डा होएगा जिसने 5 रुपये देते होंगे, पर 32 रुपये नौ आने, एडी वड्डी बख्शीश। बाबा साहब सिंह जी कहन लगे कलंदर नूं भाई चंगी तरह ये पैसे गिन लै, ये 32 रुपये नौ आने हन, तू क्या सी ना रिश नूं भाई वड्डियां बख्शिशां मिलदियां हन। हां महाराज तुसी दित्ती वड्डी बख्शिश है, ओ अपने आप नू ओ 32 रुपया नू वड्डी बख्शिश समझ रहा। ते बाबा जी कहन लगे हुण रिश दे गल विचों रस्सा खोल दे, महाराज ये भज जाएगा ते फिर हाथी नहीं आउणा। कहन लगे हुण ये भजन जोगा किथे रह गया है, हुण ये किते नहीं जा सकदा, हुण इहदा अंत समा नेड़े है, जो तेरा इसका हिसाब सी ना वह पूरा हो गया, तू भावे पैसा पैसा करके कट्ठा करके 32 रुपये नौ आने तू इहदे कोलों कर्जा लैना सी, तैनू कट्ठा दे दिता है, ते ए हुण गुरु नानक दे दर ते आ गया, ए हुण बख्शिया गया, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇਗਾ। ਤੋ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀ। दया करो किश मेहर उपावो, गुरु नानक दे दर ते आके जेड़ा भी कोई भाई श्रद्धा दे नाल चुकता है गुनाह बख्शाउंदा है, फिर बख्शन विच देरी नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भी ये शब्द उचारण कीता साडे गुनाह बख्शाउण लई, ओ आप तां निरंकार सन, आप तां समर्थ पुरख सन, अनंत कला दे मालक सन,